अध्यात्म ज्योति 104.8 सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: radyo sundurmunca Karikrim Puspanjali.
1: आदरणीय श्रोता कार्यक्रम पुष्पांजलि में अहिले यहाँ कहीं सुमधुर भजन को क्रम में हूँ।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ।

सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिप बाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामान हरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: आदरणीय श्रोता यहाँ अहिले जयश्री फूड्स प्राली को प्रायोजन में रहेको कार्यक्रम सर्वमंगलम मा श्री महावीर हनुमान जी का कई भजन सुन्दै

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: व्यावसायिक संदेश पछि आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सर्वमंगलम मा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जयश्री फूड्स प्राली द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम सर्वमंगलम मा यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ श्री महावीर हनुमान जी का केही भजनहरू।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन।
0: कार्यक्रम सर्वमंगलम यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: रसावेल चुच्चे पाटी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूँ।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाओ में बैठकर आपने स्टार्ट किया है जो आपको सन 1971 के दूसरे हिस्से में भी ले चलेगा और 1972 के पहले हिस्से के हंगामे भी दिखाएगा। मगर भाई, पहले जरा छाओ ही में रहकर ये तो बताइए कि क्या हालचाल है आपका।

0: ये मुखड़ा मैंने लिया गुलजार की फिल्म मेरे अपने से। भाई गुलजार साहब की तो न सिर्फ शायरी अनोखी होती है बल्कि डायरेक्शन भी इतनी पुरअसर कि नए लोग तो खास तौर पर उन्हें स्कूल समझकर उनके साथ काम करने के लिए तड़पते रहते हैं। हमारे असरानी साहब भी उन दिनों नए थे, तो भाई असरानी ही से सुनिए कि गुलजार साहब का डायरेक्शन करने का तरीका उन्होंने कैसा पाया।
1: उनका तरीका बड़ा दोस्ताना है अमीन साहब, वो ऐसा फील नहीं होने देते कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या फिल्म के सेट पर हैं। फिल्म के सेट पर तो हैं, वो थोड़ा डिसिप्लिन तो होना जरूरी भी है, मगर ऐसा बात करेंगे कि भाई थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा वैसा कर लो, और ऐसा कर लो जैसे तुम करते हो यार रोजमर्रा की जिंदगी में, करो करो करो करो करो ऐसा। तो वो लगता है कि बिल्कुल आराम से और कोई गड़बड़ नहीं और कोई ऐसा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो करते करते अपना काम निकाल लेते हैं वो।
0: अच्छा भाई, फिल्म मेरे अपने में सलील चौधरी का लाजवाब संगीत था, फिल्म भी गजब की थी, लेकिन अफसोस कि मेरे अपने का एक भी गीत मेरी आपकी गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंचा। पर कोई बात नहीं साहब, हमारे दिलों में और गीतमाला की छांव में तो वो गीत बसे ही हुए हैं।

अच्छा दोस्तों, अब ये बताइए, आज 1971 के बाकी हिट गीतों का सिलसिला सालाना संगीत सीढ़ी की किस नंबर की पायदान से शुरू होगा? हाँ, पायदान नंबर 9 से, जिस पर फिल्म मैं सुंदर हूं का वो गीत था जिसमें लीना चंदावरकर की कुल्फी जम रही थी विश्वजीत की दूरी से।

और पायदान नंबर 8 पर उस साल हिट फिल्म अंदाज का गीत था। अंदाज की कहानी औरों से बिल्कुल ही अलग थी साहब। दो शादीशुदा जोड़े, एक जोड़े की पत्नी हेमा मालिनी और पति के गेस्ट रोल में राजेश खन्ना, और दूसरी जोड़ी की पत्नी के गेस्ट अपीयरेंस में सिमी और पति शम्मी कपूर। फिर दो दुर्घटनाएं, राजेश खन्ना और सिमी बिल्कुल गायब, और हेमा की शादी हो जाती है शम्मी कपूर से, जिनके दो बच्चे भी थे। और साहब एक मोड़ पर आकर दोनों बच्चों ने मिलकर याद है कैसे प्यार बढ़ाया था।

0: उसी फिल्म में राजेश खन्ना का जो सुपरहिट गीत था ना, वो आप बस थोड़ी देर में सुनेंगे, इंतजार कीजिए। मगर उस साल की पायदान नंबर 7 पर सुनिए राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के एक और हिट गीत की झलक।
1: जिंदगी कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना की इसी बेमिसाल फिल्म में मैंने पहली बार देखा था अमिताभ बच्चन का चेहरा। मगर बहनों भाइयों, आप जानते हैं मेरी किस्मत ने कैसी जबरदस्त कोशिश की थी मुझे आनंद से भी बहुत पहले अमिताभ से मिलवाने की। हुआ ये था कि जब अमिताभ फिल्मों में दाखिल नहीं हुए थे तो वो दो बार मेरे दफ्तर में आए थे अपनी मधुर खरजदार आवाज का ऑडिशन देने के लिए। मगर इत्तेफाक से दोनों ही बार मैं अपने स्टूडियो में बंद इतना उलझा हुआ था कि उनसे मिल भी नहीं पाया। फिर जब बरसों के बाद मुझे पता चला कि रेडियो सलोन के प्रोग्रामों और कमर्शियल्स में बोलने की उम्मीद में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मैं तो भाई सर पकड़ कर बैठ गया कि माय गॉड, इतनी गजब की आवाज वाले अमिताभ।

वचन मेरे स्टूडियो में आए और मैं उनसे नहीं मिल पाया, मगर फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं मिलता तो मेरी ही यूनिट में मैं उन्हें अनाउंसर बना देता और फिर तो जरूर वो रेडियो स्टार बन जाते। और तब तो भाई दो गड़बड़ें हो जाती, एक तो ये कि फिल्मी दुनिया एक सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम को खो बैठती, और दूसरे रेडियो में अगर वो छा जाते तो भाई मुझे कौन सुनता है। तो चलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ साहब। आइए इस बात पर आनंद का वो एकमात्र गीत सुने जो अमिताभ से ताल्लुक रखता था, मगर जिसे स्क्रीन पर गाया था सुमिता सान्याल ने।

0: और अब जरा दिल थाम के सुनिए कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुझे क्या बताया था उनके अपने पहले फेवरेट स्टार राजेश खन्ना के बारे में।
1: सबसे पहले मैंने राजेश खन्ना की फोटो देखी जब वो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हुए थे।
0: जी,
1: मेरा छोटा भाई मुझसे काफी अरसे से इसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पर जोर दे रहा था और उसने मेरे कई फोटो भी खींच रखे थे।
2: अच्छा, वैसे आप उन दिनों कर क्या रहे थे?
1: मैं उन दिनों कलकत्ते में सर्विस कर रहा था।
2: जी
1: हाँ, तो एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरा भाई मुझे एक कमरे में ले गया और वहां मैंने देखा कि दीवार पर मेरी कई तस्वीरें लगी हुई हैं और बीच में उसने राजेश खन्ना की तस्वीर लगा रखी।
2: ओहो, वो क्यों?
1: ये साबित करने के लिए कि मैं भी फिल्म स्टार बन सकता हूँ।
2: अच्छा अच्छा।
1: राजेश की वो फोटो देखकर ही मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि इस आदमी से अपनी बन सकती है और मैं बंबई आने से पहले ही राजेश से मिलने के लिए उत्सुक होने लगा। खैर साहब, बंबई आया और फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने से पहले ही एक दिन श्री साउंड स्टूडियो में फिल्म डोली की शूटिंग पर आखिर उनसे मुलाकात हुई।
2: अच्छा।
1: उन दिनों तो वो भी नए नए थे। फिर जब मुझे फिल्म आनंद में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सच है।
2: तो आनंद की शूटिंग के दौरान तो आपने उन्हें काफी करीब से देखा होगा, ये बताइए कैसा पाया आपने राजेश खन्ना को?
1: बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करने में। कुछ तो हम दोनों का स्वभाव भी मिलता जुलता है, इसीलिए काम करने में कोई टेंशन कोई उलझन नहीं हुई। दूसरे राजेश में दिखावा नहीं है, इसलिए उसने ये कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं कितने बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा भाई, चलिए अब अमिताभ की बातें सुनकर जरा जल्दी जल्दी से लौट चले 1971 की संगीत सीढ़ी पर। उस साल की पायदान नंबर 6 पर भी राजेश खन्ना की फिल्म थी जिसमें उनकी एक तरफ थी चुलबुली तनुजा और दूसरी तरफ हाथी मेरे साथी।

0: और साहब नंबर 4 पर किशोर कुमारम ने किसे पुकारा था?
1: कुनी जनो रे भक्त जनो।
0: ये फिल्म आंसू और मुस्कान का वो गीत था जिसमें हमारे किशोरदा की असली मुसीबत का जिक्र था।
2: अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम,
3: जय गोविंदम जय गोपाल।
2: अरे पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम,
3: जय गोविंदम जय गोपाल।
2: अरे बम बम नाचे किशोर कुमार, बम बम मको, बम बम मको, बम बम मको, बम बम मको।
0: और ये आई झलक 1971 के सॉन्ग नंबर 3 की। आहा, वो भी क्या फिल्म थी साहब, कटी।

0: प्यार।
1: अच्छा भाई, अब पल भर चैन की सांस लेकर मोहब्बत का एक और बड़ा प्यारा रूप देखिए साहब। उस साल की छाव के एक जरा रेयर, एक जरा कम सुने हुए गाने से जो बहनों भाइयों आप शायद भूल ही गए होंगे। इसकी फिल्म से तीन ऐसे जबरदस्त लोग जुड़े हुए थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिनका मैं फैन भी था और जूनियर दोस्त भी था। डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास, संगीतकार जयदेव और गीतकार कैफी आजमी। साथ में नौजवान से हीरो भी बड़ी कम उम्र में चल बसे थे, मेरे प्यारे बड़े अच्छे दोस्त जलाल आगा। मगर शुक्र है हीरोइन सिमी गरेवाल अब तक हैं हम सबके बीच और आज भी वैसी की वैसी स्वीट लगती हैं। फिल्म का नाम कवर पर नहीं नहीं नहीं चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, दो बूंद पानी।

0: ओके, अब सिर्फ दो झलकें बाकी हैं 1971 के दो टॉप हिट गीतों की, और फिर 1972 की बारी आने वाली है। 1971 में पायदान नंबर दो पर था फिल्मी दुनिया का शानदार हिट बाय बाय सॉन्ग, मगर फिल्म का नाम था आन मिलो सजना।
1: अच्छा,

आकर एक दिन चले जाना तो दस्तूर है भाई दुनिया का। गीतमाला की छाओं में के इस वॉल्यूम नंबर 34 की रिकॉर्डिंग से कुछ अरसा पहले 5 नवंबर 2011 के दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए आसाम के बड़े महान संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका।

जी ने हिंदी फिल्मों में भी बड़ा खूबसूरत संगीत दिया था, जिनका एक नमूना आप शायद गीतमाला की छाओं के अगले पैक में सुनेंगे, अगले वॉल्यूम में नहीं, अगले पैक में। लेकिन आसाम में तो भाई वो बरसों से हर दिल में बसे रहे थे, और जब उनके शव को मुंबई से गुवाहाटी ले जाया गया और दो दिन वहां ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रखा गया, तो उनके आखिरी दर्शन के लिए 5 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। बहनों भाइयों, इस वक्त मैं और कुछ नहीं कहूंगा भूपेन हजारिका साहब के बारे में, बस बजा दूंगा आखिरी अंतरा उस हिट गीत का जो सन 1971 का सबसे लोकप्रिय हिट गीत नंबर 1 था, और जिसके जरिए संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी लोकप्रियता की चोटी को छू लिया था।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: बहनों भाइयों, इसी मोड़ पर तू आना ही चाहिए। तन्हाई का वो अमर गीत जो रह गया था उस साल छाव में। याद कीजिए उन सबको जो आज नहीं है और कहिए।

मगर दोस्तों अब आंसू पोंछिए, देखिए बादल छट गए और शुरू हो रही हैं 1972 के हिट संगीत की बहारें। उस साल के पायदान नंबर 37 पर आपको अपने घर बुला रहा था

0: और ये मैं हूँ।
1: मैं यानी? अरे बाप रे, फिर राजेश खन्ना है। और पायदान नंबर 36 पर था फिल्म कारवां का जुबन।

0: मन की।
1: लेकिन उस उम्र तक पहुंचने से पहले अफसोस कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मगर ये भी सही है बहनों भाइयों कि जब तक वो साथ रहे उन्हें एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं आता था। उनके प्यार की एक मिसाल दूं आपको छांव से और उसी फिल्म से।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। उन दिनों रणधीर कपूर की कई फिल्में आई थीं। कम से कम दो फिल्मों में उनकी हीरोइन कौन थी? जया भादुरी जान। तो उसी साल जब जया से मैंने पूछा था कि क्या रणधीर कपूर आपको कभी अपनी मंगेतर बबीता के बारे में बताते हैं, तो जया बोली,
1: नहीं
2: नहीं बताते। अच्छा, वैसे बबीता सेट पर आती हैं?
1: जी हाँ, कभी कभी।
2: तब डब्बू कैसे बिहेव करते हैं?
1: वैसे तो अपने अंकल यानी शम्मी कपूर की तरह हर वक्त उछल कूद करते रहते हैं, मगर जब उनकी फियांसी बबीता आती हैं तो उनके पास जाकर चुपके से बैठ जाते हैं और लाइक अ जेंटलमैन बात करते हैं।
2: और आपसे क्या बातें किया करते हैं?
1: मुझसे तो ज्यादातर अपनी फिल्म कल आज और कल के बारे में कहते हैं, उसमें मैंने ये किया है, वो किया है, जया तुम्हारा ये ड्रेस अच्छा नहीं है, वो ड्रेस अच्छा नहीं है, जरा मेरी फिल्म देखना तो मालूम होगा।
2: अच्छा, डब्बू की कुछ विशेषताएं?
1: अमीन साहब, वो अपने साथी कलाकारों को सीन बहुत अच्छा समझाते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। दूसरे, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर काफी है। लंबे लंबे डायलॉग नहीं बोलेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ करके हंसी मजाक पैदा करने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा भाई, अब चलिए फिर से 1972 की संगीत सीढ़ी पर। पायदान नंबर 34 पर था फिल्म सीमा का गीत। देखिए देखिए।
3: लड़की

0: और नंबर 33 पर देखिए क्या देखा मुमताज और राजेश खन्ना ने फिल्म दुश्मन में।
1: मैंने देखा तूने।
0: फिल्म का नाम या तो आपके दिल के आईने में या फिर इस पैक के कवर पर, मगर यहाँ मैं इतना बता दूं कि ये गीत खुद सलिल चौधरी के सबसे पसंदीदा गीतों में शामिल था।
1: रातों के साथ

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

ये वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है समझ।

अध्याय भगवान गणेश्वर के वेद प्रसिद्ध अष्ट नाम। हिमगिरी नंदिनी, आपके पुत्र गणेश्वर तो वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके आठ नामों में एक नाम, एक दंत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वे आठ नाम यह हैं: गणेश मेकदंतम चहिरम्ब विघ्ननाशकम, लंबोदरम शूर्पकर्णम, गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश एक दंत, हेरम्ब विघ्न विनाशक, लंबोद्र शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये नाम सर्वत्र मंगल करने वाले और सर्वत्र संकटों का नाश करने वाले होते हैं। यह गणेश जी के नामाष्टक स्तोत्र अपने अर्थों में संयुक्त एवं शुभ करने वाला होता है। जो भक्त इनका तीनों संध्याओं में पाठ करता है वह सभी प्रकार से सुखी होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। उस स्तोत्र के पाठ से विघ्नों का नाश उसी प्रकार से हो जाता है जैसे गरुड़ के द्वारा सर्पों का नाश होता है। हे दुर्गे, इस स्तोत्र का पारायण करने वाला भगवान गणेश्वर की कृपा से महान ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, पत्नी की अभिलाषा वाले को पत्नी और महामूर्ख को भी श्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। वह निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, आपने जिस नामाष्टक स्तोत्र की इतनी महिमा कही है वह कौन सा है? उसे आप मेरे प्रति कहने की कृपा करें। उसे सुनने की मुझे अत्यंत उत्कंठा हो रही है। प्रभु, मैं भी उसका अनुष्ठान करके अपने को पवित्र बनाता हुआ धन्य हो जाऊंगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। भला कौन सा बुद्धिमान पुरुष सहज प्राप्त उस स्तोत्र की कामना ना करेगा? स्वयं भगवान नारायण ने ही नारद जी को वह स्तोत्र भी बतलाया है। भगवान नारायण ने कहा, उन वामन भगवान ने जगजननी माँ उमा को वह नामाष्टक स्तोत्र इस प्रकार बतलाया था: ज्ञानार्थ वाचको गश्चणश्च निर्वाण वाचकः, तयोरिशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम्। एक शब्दः प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचकः, बलम प्रधानम सर्वसमादिकंदतम नमाम्यहम्। दीनार्थ वाचको हेशच रंबः पालक वाचकः, दीनानाम परिपालकम हेरंब प्रणमाम्यहम्। विपत्ति वाचको विघ्नो नायकः खंडनार्थकः, विपत्त खंडन कारकम नमामि विघ्न नायकम। विष्णु दतेश च निविधर्यस्य लंबोदरम पुरा, पित्रा दतेश्च विविधिर वंदे लंबोदरम च तम। शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्न वारण कारणो, संपदो ज्ञान रूपो च शूर्पकर्णम नमाम्यहम्। विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन्न मृधिन मुनि दत्तकम, तद गजेन्द्र वक्त्रयुक्तम गजवक्त्रम नमाम्यहम्। गुहास्याग्रे च जातो यमा विरभुतो हरालया, वंदे गुहाग्रजम देवम सर्वदेवाग्र पूजितम। अर्थात ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों ग और ण अक्षरों के जो ईश्वर हैं उन गणेश्वर रूप पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। एक शब्द प्रदानार्थक और दंत शब्द बलवाचक है। इस प्रकार जो एक दंत भगवान सबसे अधिक बल प्रधान है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और अम्ब शब्द पालक का वाचक है। इस प्रकार दोनों का परिपालन करने वाले हे रंब को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्न शब्द विपत्ति वाचक और नायक शब्द खंडनार्थक है। अतः जो विपत्तियों के नाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त नैवेद्यों
और पिता द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के सेवन से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर को नमस्कार है, जिनके कान शूर्प के समान है तथा जो विघ्नों के निवारण में कारण समस्त संपदाओं के दाता तथा ज्ञान स्वरूप हैं, उन शूर्प कर्ण गणेश जी को नमस्कार करता हूँ, जिनके मस्तक पर मुनि प्रदत्त भगवान विष्णु का निवेद्य रूप पुष्प विद्यमान है और जो गजेंद्र के मुख से संपन्न है उन भगवान गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान परशुराम जी का श्री माँ उमा को प्रसन्न करना, गणेश जी के इन नामाष्टक स्तोत्र का उपदेश करने के पश्चात भगवान श्री हरि ने भगवान परशुराम से कहा, भृगुनंदन तुमने भगवान गणेश्वर का एक दांत तोड़कर अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम इस दोष से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक जग जननी माता पार्वती जी को संतुष्ट ना कर लो। यह गिरिराज नंदनी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्रकृति से परे एवं निर्गुण है, इन्हीं की शक्ति से गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण भी शक्ति संपन्न हुए हैं, यह समस्त देवताओं की भी माता है, अतः स्तवन द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। भगवान परशुराम ने भगवान श्री हरि की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर भगवान अपने धाम को जाने के लिए प्रस्तुत होते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और फिर माँ जगन माता माता

अपराध क्षमा कर दीजिए माता, शिशुओं से जो अपराध हो जाता है उस पर माता कहीं क्रोध करती है क्या? अर्थात नहीं करती। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात रेणुका नंदन ने गिरिराज नंदनी के चरण पकड़ लिए और बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर माता पार्वती जी से ना रह गया, उनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। वे बोली, वत्स, तुम चिरंजीवी हो जाओ, तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो, तुम्हें गुरुदेव परमात्मा भगवान शिव की कृपा से सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो तथा तुम सर्वत्र विजय हो। सर्वात्मा भगवान श्री हरि तुम पर सदैव प्रसन्न रहें। माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त होने पर भृगुनंदन परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय उन्होंने सुना, सभी दिशाएं भगवान नाम से व्याप्त हो रही हैं, सर्वत्र उन्हीं का जय घोष सुनाई दे रहा है। ममता मई माता पार्वती जी परम संतुष्ट होकर अंतःपुर में चली गईं। अब भगवान परशुराम जी ने भगवान एक दंत गणेश्वर का विविध उपचारों से पूजन किया और फिर प्रीति पूर्वक उनका स्तवन करने लगे। इस प्रकार भगवान गणराज की प्रसन्नता प्राप्त कर परम गुरु भगवान शंकर को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा लेकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

नवम अध्याय तुलसी जी का गणपति जी को शाप। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है और अब क्या सुनना चाहते हो वह बताओ। नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। भगवान श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ हैं। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है, अतः आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार नारद जी का आग्रह देखकर भगवान श्री नारायण ने कहना आरंभ किया, नारद जी, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जो कि ब्रह्म कल्प में घटित हुआ था। एक बार भगवान गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्ध उन्मिलित नेत्र थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटे सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार लटके हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर देदीपयमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुख मंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लजाता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं विधुत्पम श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार भगवान गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ जागते हुए से अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी देवी भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्वती नंदन एक दंत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ध्यान रत थे। माता तुलसी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गईं। उन्होंने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन जी का, इनसे वार्तालाप करके विचार जानने चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार कर तुलसी जी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोदर, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर के समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं? क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की है? भगवान गणेश्वर माता तुलसी को देखकर कुछ अचकचाए, सोचा, यह कौन है? मेरे पास आने का इनका क्या प्रयोजन है? जब कोई समाधान ना हुआ तो वे बोले, वत्से, मैंने तुम्हें अब से पहले कहीं नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो, यहाँ किस प्रयोजन से आई हो, मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ, आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन जी ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी भी उपस्थित नहीं करना चाहिए, इसमें सर्वथा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान आपका मंगल करें, अब आप यहाँ से चली जाएं। यह सुनकर तुलसी जी ने अपनी व्यथा कही, पार्वती तनया, मेरी बात सुनो, मैं मनो अनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे किंतु आप पसंद आए हो मुझे,
अतएव आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन। उसके दायित्व का निर्वाह करना है, इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशयों को उत्पन्न करने वाली है। अतएव हे माता, मेरी ओर से चित हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। माता तुलसी बोली, एक दंत, मैं तो तुमको ही अपने मनो अनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकरा कर निराश करने का प्रयत्न ना करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। भगवान गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, तब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार करूं? माता, तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना चित पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में आपका कल्याण निहित है। तुलसी जी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान गणपति का तुलसी जी को शाप वर्णन। तुलसी प्रदत्त शाप को सुनकर भगवान गणपति शाप दिए बिना ना रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही शाप दे डाला है, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा, तथा उसके पश्चात महापुरुषों के शापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। शाप सुनकर तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति की, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का शाप आपने दिया है उनका निवारण भी आप कर सकते हैं। हे दुखनाशक, दुखों को दूर कीजिए। माता तुलसी की विनय सुनकर भगवान गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी, कलांश से भगवान श्री नारायण की प्रिय बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष रुचि रहेगी, विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। भगवान गणपति से उक्त वर प्राप्त कर माता तुलसी अपने गंतव्य स्थान को गई और इधर भगवान गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपस्या करने के लिए चले गए। यह सुनकर शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, माता तुलसी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई तथा वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो रासेश्वरी श्री राधा जी के शापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई भगवान श्री हरि की परम प्रिया हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: पर्ने जर्मन प्रविधिबाट बनेको उत्कृष्ट उत्पादन ऊर्जा दाल र चामल। ऊर्जा दाल चामल स्वादले खाइन्छ, सधैँ स्वस्थ भइन्छ।
1: नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुट सहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रमसम्म 2079 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेउता सावाहरू 1 करोड सम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्त भित्र योजना अनुसार ब्याज छुट सुविधा सहित कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोले यस ब्याङ्कको नजिकको शाखा कार्यालयमा जानुभई ब्याज छुट सुविधाको लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ। शर्त तथा सन्देशहरू लागू हुनेछ।
2: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क।
3: एफएम अध्यात्म ज्योतिका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820, मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
4: तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ एफएम अध्यात्म ज्योति।
5: पञ्चम खण्ड प्रथम अध्याय देवांतक नरांतक के जन्म का वृतांत। अंग देश के किसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता रुद्र देव नामक ब्राह्मण हुए। वे समस्त निगमानिगम में पूर्ण पारंगत देवता ब्राह्मण और गौओं का पूजन करने वाले तथा भगवत भक्त थे। उनकी पत्नी शारदा अनुपम रूप लावणमय थी एवं पतिव्रता थी। पति की भी पत्नी के प्रति अत्यंत प्रीति थी, इसीलिए वे उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। शारदा गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होने पर उन्होंने 2 यमज पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर रुद्रदेव प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि आज मेरा मनुष्य जीवन और तपस्या सफल हुई है। इन अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति से मेरा वंश धन्य हो गया है। रुद्रदेव ने अत्यंत उल्लास पूर्वक पुत्रों के जात कर्म आदि संस्कार कराए। अर्ध्य आदि के द्वारा ब्राह्मणों का संस्कार कर मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश का पूजन, स्वस्ति वाचन, मात्र का पूजन, आभ्युदायक श्राद्ध आदि सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। संस्कार होने पर उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें रत्न आदि धन प्रदान किए। घर घर शर्करा बटवाई और धूमधाम से उत्सवार्थ सुखद ध्वनि वाले बाजे बजवाए गए। फिर नाम करणार्थ ज्योतिषियों को बुलाकर उनका भी अर्ध्य आदि से सत्कार निवेदन किया गया। देवज्ञ गण, कृपया इन बालकों का नाम निर्देश कीजिए। ज्योतिषियों ने गणना आदि के द्वारा निष्कर्ष निकाला, विप्रश्रेष्ठ, यह दोनों बालक निस्संदेह बड़े पराक्रमी और प्रबल प्रतापी होंगे। इनका नाम देवांतक और नरांतक रहेगा। रत्न आदि दक्षिणा से संतुष्ट कर रुद्रदेव ने ज्योतिषियों को विदा किया। उनके दोनों बालक अत्यंत सुंदर थे और वे जो बाल क्रीड़ा करने लगे उससे माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त होता था। धीरे धीरे उनकी क्रीड़ाओं में साहस का भी समावेश होने लगा। इस कारण जो भी उनकी क्रीड़ाओं को देखता वही आश्चर्यचकित रह जाता। सभी उन बालकों के साहस की प्रशंसा करते हुए रुद्रदेव को भाग्यवान बताते। एक बार विप्रवर रुद्रदेव के घर देवर्षि नारद जी पधारे। विप्र दंपत्ति ने अर्ध्य पाध्य आदि द्वारा सत्कार कर श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ आसन दिया। देवर्षि विराजमान हो गए तब उनकी सेवा में दोनों बालक उपस्थित किए गए तथा बालक से उन्हें प्रणाम कराया गया। महामुनि नारद जी ने उन बालकों को देखकर कहा, रुद्रदेव, तुम्हारे दोनों पुत्र बहुत शूरवीर, प्रबल प्रतापी तथा तीनों लोकों के विजेता होंगे। वस्तुतः ऐसे यशस्वी पुत्र उत्पन्न होने के कारण तुम बधाई के पात्र हो। नारद जी के वचन सुनकर रुद्रदेव और माता शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवऋषि से निवेदन किया, मुनिवर, आप इन बालकों पर कृपा कर दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें तथा यह भी अनुग्रह करें कि यह शत्रुओं को पराजित करके तीनों लोकों में प्रसिद्धि पावे। प्रार्थना सुनकर देवऋषि नारद जी ने बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि यह भगवान शिव जी को प्रसन्न कर ले तो सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तदउपरांत देवऋषि ने बालकों को भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उपदेश दिया और वीणा पर हरि गुण गान करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। देवांतक और नरांतक को वर प्रदान करना। दोनों बालक शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। पूज्य पिताजी, आदरणीय माता जी, हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दीजिए। रुद्रदेव तो यही चाहते थे, क्योंकि नारद जी ने भगवान शिव जी की प्रसन्नता से ही बालकों को अभ्युदय बताया था। अतः उन्होंने पत्नी से परामर्श कर दोनों को वन में जाने की अनुमति प्रदान की। तब प्रसन्न मन से दोनों भाई वहां से चल दिए। घोर वन में घूमते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां अनेक विशाल कंदराएं थीं तथा सर्वत्र सुंदर फल फूलों से लदे हुए वृक्षों के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। निकट ही एक झरना था जिससे जल सदैव प्रवाहित होता रहता। उस स्थान को ही उन्होंने अपनी तपस्या के लिए उपयुक्त समझा। दोनों ने तपस्या आरंभ की। आहार छोड़कर केवल कुछ पत्ते खाकर और पानी पीकर रह जाते, फिर केवल पानी पीकर ही बहुत दिनों तक तप करते रहे। तदउपरांत पानी भी छोड़ दिया। अब केवल शिवजी का ध्यान करते हुए एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए। उस समय उनका चित एकाग्र था और जिह्वा पर केवल पंचाक्षरी मंत्र चल रहा था। इस प्रकार एक पांव के अंगूठे से खड़े हुए तथा केवल वायु पान करते हुए उन्हें 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया त्यों त्यों उनकी तपस्या उग्र होती गई। सभी प्रकार की तपस्या को मिलाकर 10000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनका शरीर क्रश होता जा रहा था, किंतु मुख पर तेज बढ़ता जा रहा था। उनके तेज से वह वन प्रायः अंधेरी रातों में भी जगमगाया रहता। भक्तों की अविचल भक्ति देखकर भगवान उमानाथ का आसन डगमगाने लगा। उन्होंने समझ लिया कि अब अधिक विलंब करना उचित नहीं है, इसीलिए भारी भरकम वृषभ पर आरूढ़ हुए और उसी वन प्रांत की ओर चल पड़े। परंतु उनका इस प्रकार जाना कोई देख नहीं सकता था। भगवान शंकर देवांतक नरांतक के समक्ष प्रकट हुए तो वे दोनों उन्हें एकटक देखने लगे। उनके पंचमुख, त्रिलोचन, दशभुज एवं शीश पर गंगा तथा माथे पर अर्धचंद्र युक्त रूप को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि यही हमारे उपास्य देव हैं। और तब उन्होंने आनंदातिरेक में भरकर पहले तो नृत्य किया और फिर प्रणाम करने के लिए भगवान शिवजी के समक्ष धरती पर लेट गए। तदउपरांत कुछ स्वस्थ होकर भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिवजी की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपके अलभ्य दर्शन प्राप्त करके हम दोनों अत्यंत धन्य हो गए हैं। हे प्रभु, सनकादि मुनिगण एवं सहस्त्रमुख वाले शेष भगवान भी आपकी ठीक प्रकार से स्तुति करने में असमर्थ है, तो हम अज्ञानी बालक ही आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। हे नाथ, आप सर्व समर्थ हैं, आपकी कृपा प्राप्त करके ही सर्वथा दीनहीन व्यक्ति भी सर्वांग सुंदर बन जाते हैं। ना जाने कितने रंगों को आपने राजा बना दिया है। हे भक्तवत्सल, आपके लिए कहीं कुछ भी तो असंभव नहीं है। कहते कहते दोनों तपस्वियों के कंठ गद्य गद्य हो गए, उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। यह देखकर प्रसन्न हुए भगवान वृषभध्वज उनसे कहने लगे, विप्रतनयों तपस्वियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव अपना अभीष्ट वर मांगो। देवांतक नरांतक ने भगवान आशुतोष को अपने ऊपर प्रसन्न जानकर निवेदन किया, देवाधिदेव जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि कोई भी मनुष्य, यक्ष, राक्षस, देवता, देवाधिपति इंद्र, गंधर्व, किन्नर, भूत पिशाच आदि हमें मार ना सके, हम किसी से भी पराजित ना हो, पशु, ग्रह, नक्षत्र, सर्प, कृमि, कीट आदि के द्वारा भी हमारी मृत्यु ना हो, हम किसी शस्त्र अस्त्र आदि से ना मारे जाएं, वन, ग्राम या नगर आदि में कहीं भी हमारी हिंसा ना हो सके। इसके साथ ही हे सर्वेश्वर, हमें तीनों लोकों का राज्य और चरणारविंदों की सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान शंकर ने अपना कर कमल उनके मस्तकों पर फिराते हुए कहा, भक्तों, तुम्हारे सभी अभीष्ट पूर्ण होंगे, तीनों लोकों पर तुम भय रहित रूप से शासन करोगे। दोनों भाइयों ने हर्ष विभोर होकर भगवान भूतनाथ के चरणों में पुनः प्रणाम किया और तभी उनके देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति से संतुष्ट एवं सफल मनोरथ हुए दोनों विप्रपुत्र घर लौटे और माता पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर भगवान आशुतोष से वर प्राप्ति का समाचार उन्हें सुनाया। पुत्र की तपस्या सफल हुई सुनकर रुद्रदेव और उनकी पत्नी शारदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्रों को गोद में भरकर उनके मस्तक सूंघते हुए कहा, पुत्रों, तुमने अपना जीवन पवित्र बना लिया तथा कुल को भी यशस्वी बना डाला। तदुपरांत उन विप्रश्रेष्ठ ने अनेक ब्राह्मणों और तपस्वियों को बुलाकर उनका विधिवत पूजन किया तथा अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन कराकर रत्न आदि युक्त दक्षिणा दी। तब वे ब्राह्मण और तपस्वी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
3: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

दूसरा अध्याय देवांतक नरांतक द्वारा त्रैलोक्य विजय। नरांतक बोला, अवश्य हमें भगवान शंकर के वरदान का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा तपस्या में किया गया घोर कष्ट व्यर्थ हो जाएगा। देवांतक ने कहा, तो तुम मृत्यु लोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करो। मैं स्वर्ग लोक में जाकर सब देवताओं को अपने अधीन किए लेता हूँ। देवांतक का स्वर्ग पर आधिपत्य। बात निश्चित हो गई। देवांतक ने शुभ दिन मुहूर्त आदि देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसने वहां पहुंचते ही नंदन कानन को उजाड़ना आरंभ कर दिया। यह देखकर रक्षकों ने उसे रोका तो उसने उनको मार भगाया। नंदन कानन को नष्ट हुआ जानकर देवराज इंद्र की सुर सेना उनके समक्ष आई और उसे भी पराजित होकर भागना पड़ा। भगवान शंकर के वरदान से प्रबल हुए देवांतक के समक्ष सुरेंद्र भी ना टिक सके। बहुत प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने पर भी जब उनको अपनी विजय ना दिखाई दी तो अपना खंडित व्रज लिए ही वे प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवता मार्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे और कंद मूल के आहार पर संतोष करते हुए दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। देवांतक की अमरावती पर विजय हुई सुनकर अनेकों असुरों ने वहां जा पहुंचे। जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वे भी वहीं रह गए। सभी ने देवांतक से धन और अलंकार पाकर उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाए गए और ऋषियों ने मंत्र पाठ पूर्वक स्वर्ग के राज्य पद पर उनका अभिषेक किया। उस समय सुखद सुमधुर वाद्य बज रहे थे। नरांतक की विजय मृत्यु लोक और पाताल लोक पर। इधर नरांतक ने भी अपने भाई का अनुसरण किया। उसने बहुत सी असुर सेना एकत्र कर मृत्यु लोक में विद्यमान राजाओं पर आक्रमण कर दिया। उनके अधिपतियों ने उस भारी सेना को देखा तो कुछ ने विनाश से बचने के लिए संधि कर ली और कुछ ने सम्मुख आकर युद्ध किया, परंतु नरांतक के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता था। वह भगवान शिव जी द्वारा प्राप्त वर से प्रबल हो रहा था, इसलिए बहुतों को उसने मार डाला और बहुतों को पराजित कर अधीन बना लिया। बहुतों से स्वाभिमानी राजा राज्य छोड़कर पहले ही पलायन कर गए। इस प्रकार नरांतक ने समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञ आदि कर्म बंद कर देने की घोषणा की, जिससे शुद्ध हुए अनेकों ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्थानों को छोड़कर गिरी गुफाओं में अपना स्थान बनाया। प्रजा वर्ग में भी धर्म कर्म के निषेध से आतंक फैलने लगा, किंतु भगवान की इच्छा प्रबल जानकर सभी मौन हो गए। पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने पाताल लोक को अधीन करने की योजना बनाई और असुरों की असंख्य सेनाएं एकत्र कर वह नागलोक की ओर चल पड़ा। नरांतक द्वारा नागलोक की पराजय वर्णन। मायावी असुरों की कुछ सेनाएं गरुड़ों का रूप धारण कर नागलोक के द्वार पर जा पहुंची। उनके प्रतिकारार्थ नागों के दल नगर से बाहर निकलने लगे, परंतु धूर्त असुरों ने उन्हें युद्ध का अवसर दिए बिना ही मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार असंख्य नाग वीर मारे गए। बाद में नागों ने भी एकत्र होकर सामना किया, किंतु वे असुरों के समक्ष अधिक ना ठहर सके। न जाने कितने प्रमुख नागों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो शेष रहे उनके समक्ष भागने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं था। इस प्रकार समस्त नागलोक संत्रस्त हो उठा। नागवनिताएं करुण क्रंदन करने लगी। प्रमुख नागों में परस्पर मंत्रणा आरंभ हुई और अंत में निश्चय हुआ कि

से संधि कर ली जाए। इस प्रकार विवश हुए नागों ने नारांतक के समक्ष आत्मसमर्पण करके उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। नारांतक ने फिर भी वहां का आधिपत्य नागों के पास ही रहने दिया। उनके एक प्रबल असुर को वहां का शासनाधिकारी एवं सर्वे सर्वा नियुक्त किया गया, जिसने कुटिलता पूर्वक नागलोक में यह घोषणा कर दी कि अब यह असुरों का शासन है, कोई भी नाग शांति भंग ना करे, अन्यथा समस्त नाग जाति को दंड भोगना होगा। इस प्रकार पृथ्वी और पाताल लोक दोनों नरांतक के अधीन हो गए। यह समाचार देवांतक ने सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई तीनों लोकों के अधिपति बन गए। अब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। स्वर्ग से पृथ्वी की और पृथ्वी से स्वर्ग की विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं का आयात निर्यात होने लगा। दोनों भाई इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुओं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका उपभोग उन दोनों भाइयों तक ही सीमित था। इस प्रकार इन बंधु द्वय का तीनों पर एक क्षत्रिय राज्य था। इस कारण देवता, मुनि, ऋषि, मनुष्य आदि सभी बहुत कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसके फलस्वरूप सर्वत्र अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था। माता अदिति द्वारा घोर तपस्या का प्रारंभ। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप जी त्रिकालज्ञ, तपस्वी, ज्ञानी, पुण्य आत्मा, सतेंद्रिय एवं अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त निगमागम शास्त्र के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय सामर्थ्य विद्यमान थी। इनकी पत्नी माता अदिति परम सुशील होने के कारण पति की अत्यंत प्रियतमा थी। उन पर महर्षि की बहुत बड़ी कृपा रहती थी। देवराज इंद्र एवं अन्य देवगण उन्हीं की कोख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए देवांतक द्वारा पराभूत हुए देवताओं की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझता था कि उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए। जब उन्हें कोई उपाय दिखाई ना दिया तो वे सोचने लगी कि क्यों ना पति देव से ही इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाए। यदि किसी प्रकार मैं भगवान श्री हरि को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकूं, तो समस्त संकट का निवारण सहज में ही संभव।